0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: टीम पॉइंट ब्लैंक म्यूजिक
3: इट्स बाय ऑन द मशीन
2: बैक बी मु डोज दे यू नो जेस लेंस इग्वे अनदर वन से सो इन मारो केलेले He maro kelele, shawa du wele wele wele wele wele wele wele wele balo show. He maro kelele, he maro kelele, shawa du ngwanga.